0: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. मित्रांनो, खरं तर आज रेडिओ तेरणासाठी खूप आनंदाची बाब आहे, कारण तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची सुरुवात झाल्यानंतर जी पहिली बॅच होती त्या पहिल्या बॅचचे काही स्टुडंट या ठिकाणी रेडिओ तेरणाला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. 1986 सालचे कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमधील या ब्रँचचे विद्यार्थी सय्यद बशरुद्दीन हे या ठिकाणी रेडिओ तेरणामध्ये आलेले आहेत. ते सध्या सिनियर ॲनालिस्ट म्हणून अबुधाबी या ठिकाणी कार्यरत आहेत, अर्थात विदेशामधून थेट ते तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये आलेले आहेत रेडिओ तेरणाला भेट देण्यासाठी. मैं सय्यद सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा पे.
1: शुक्रिया. नमस्कार जी, मेरा नाम सय्यद बशरुद्दीन है जी, और इस कॉलेज में मैंने 1986 में ज्वाइन किया था
0: जी.
1: उस टाइम पे तो ये मेन बिल्डिंग तो नहीं था
0: जी,
1: वो पुराना बिल्डिंग था, लेकिन एडमिशन के लिए हम लोग ढोकी जाना था.
0: अच्छा.
1: ढोकी तो पूरा एक बहुत दूर अलग सा एक्सपीरियंस था. ढोकी में गए, एडमिशन लिए, इधर आए, और हॉस्टल तो अच्छा था तब, ये PWD का गेस्ट हाउस में थोड़े दिन रहे
0: जी.
1: फिर सिटी में किसी एक घर में हम लोग रहते थे हॉस्टल की तरह.
0: अच्छा जी.
1: तब का माहौल अलग था, अब बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन जो भी है हम लोगों के लिए तो अब बहुत अच्छा है.
0: अच्छा.
1: बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा लिखा, तकलीफ भी उठाई, बट उसका फल भी अच्छा मिला
0: जी. बशरुद्दीन सर, आप जैसे कह रहे हो कि आप लगभग 36 ईयर हम बैक में चले गए होंगे, आप फ्लैश बैक में.
1: हाँ.
0: 36 ईयर्स का बड़ा स्पैन होता है.
1: Yes.
0: तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है एज ए फर्स्ट टाइम विजिट करते टाइम यहाँ पे?
1: देखो, 36 ईयर्स का अंतर तो मुझे नहीं पता होते, उतना नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में अक्सर जिक्र करता हूँ. अभी नहीं
0: जी.
1: मेरी फैमिली से जिक्र करता था, जब मेरी शादी हुई मेरे वाइफ को बताता था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, मैं मद्रास का हूँ, और इधर आने के लिए हम लोग ट्रेन में आते थे सोलापुर तक, सोलापुर से बस में आना पड़ता था
0: जी.
1: और आपको तो पता है ST कैसा
0: जी,
1: रहता है.
0: हम लोग
1: वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, जब मेरे बच्चे हुए उनको भी मैं बताता हूँ, और मैंने कहा कि मेरे फैमिली को एक बार सबको ले आऊँगा इधर दिखाऊंगा, लेकिन वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों की वजह से आज हम लोग सब इधर आ गए.
0: अच्छा. आपकी यादें जो है वो अबुधाबी में जाने के बाद भी तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज की वैसे ही बाकी है?
1: हाँ. और सही भी मानो तो यहाँ का जो मुझे डिग्री से अच्छा सा जॉब मिला है, मैं अच्छा हूँ बस. और जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, उनको एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी में क्या है, तकलीफें आती है. शुरू शुरू में आपको तकलीफें दिखेंगी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करना. अब नया जॉब ज्वाइन करोगे, शुरू में तकलीफ दिखेगा. बहुत से लोग क्या करते हैं, तकलीफ देख के छोड़ देते हैं, वो नहीं करना. कहीं भी रहो, 2-3 साल जी लगा कर एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आपकी जिंदगी अलग हो जाती है.
0: 36 साल के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारी तब्दीली आ गई है, बहुत सारी चेंजेस आ गए, तो आप इसको कैसे देखते हो कि उस वक्त के वर्स्ट कंडीशन में आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आपकी पढ़ाई?
1: एक्चुअली 36 ईयर्स, इस साल मेरा बेटा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहा है.
0: अच्छा. अच्छा. हाँ.
1: बिट्स पिलानी में, लेकिन दुबई कैंपस में
0: जी. जी.
1: तो मुझे बुलाया गया था ओरिएंटेशन के लिए. जब मैं गया तो पूरा अलग दिखा, पूरा ऑनलाइन है, सब है, ऐसा है, हमारे जमाने में वैसा नहीं था.
0: अच्छा. आपके साथ जो अभी दोस्त आ गए उनकी आप इंट्रोडक्शन करवा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा.
1: जरूर. मेरे साथ है टी श्रीकांत
0: जी,
1: ये भी मेरे साथ मेरे सेम बैच में है
0: जी,
1: और रुद्र कोटी ये. अच्छा. भी मेरे बैच में है 86 में. हम तीनों एक साथ थे और एक साथ रूममेट भी थे
0: जी.
1: 4 साल हम लोग एक ही रूम में थे.
0: अच्छा.
1: अलग नहीं हुए.
0: अच्छा.
1: जितने साल भी थे
0: जी. हाँ.
1: और ये है सुधाकर, ये 87 में ज्वाइन किया, हमारे से जूनियर, वन ईयर के.
0: जूनियर. अच्छा.
1: और ये है वेलुक कुमार, ये 88, ये हमारे से भी और जूनियर.
0: जूनियर. अच्छा.
1: लेकिन तब से हम लोग अभी भी दोस्ती है.
0: अच्छा.
1: अभी भी हम लोग मिलते रहते हैं
0: जी,
1: कम से कम 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार तो मुलाकात होती है.
0: अच्छा. तो अभी इस वक्त आपके दिमाग में कौन सा ऐसा सॉन्ग चल रहा है आपके फ्रेंडशिप को लेके?
1: मुझे तो वो 3 Idiots की मूवी याद आ रही है.
0: अच्छा. आमतौर पे मैंने देखा हुआ है अभी के जो बच्चे इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले या हाँ. जो पुराने भी है उन सबको 3 Idiots का ही गाना बहुत पसंद आते हैं. हाँ. वो बहती हवा था या कोई और?
1: बस ऐसा ही है, रैंडम.
0: कौन सा है 3 Idiots का सॉन्ग?
1: हाँ.
0: अच्छा. तो सय्यद बशरुद्दीन साहब जी, आप यहाँ पे आए सही, तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है आपको देख के कि आप पहले बैच के यहाँ के स्टूडेंट है तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय. अभी भी आगे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है इसके साथ में, लेकिन आप यहाँ पे आके आपने जो विशेष दिया इसके लिए आपका शुक्रिया.
1: नमस्कार. थैंक यू.
0: तेव्हा मित्रांनो, आत्ता आपण सय्यद बशरुद्दीन यांच्याशी चर्चा केली. आता आपल्या समवेत आहेत श्री रुद्रकोटीजी, जे मूळतः हैदराबादचे आहेत आणि 1986 बॅचचेच आहेत. सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. रुद्रकोटीजी, आपको कैसे फील हो रहा है ये भी बोलिए आप.
2: इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, नथिंग हैज बीन चेंज्ड, यू नो, फ्रॉम अ लोकेशन स्टैंड पॉइंट इट माइट बी वेरी डिफरेंट, बट द कॉलेज, द वे हाउ वी फेल्ट, I don't think we can express in words. Okay. You know, like it's as good as the way how we saw the college, where we are referring our own buildings and everything, right? So maybe the location has been changed, but nothing from our end. It is the same college. That's okay. What I feel.
0: Okay. And how will feel कि आपको जब भी आपने यहाँ पे पढ़ाई करके आपके फैमिली में आप वापिस गए थे, आपको जॉब लगा, तो यहाँ की यादें और वहाँ का माहौल आपको कैसे लगा यहाँ पे महाराष्ट्र में आके, स्पेशली क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो आप पूरे इंडिया में भी है, लेकिन आपको तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्पज से आपको क्या लगता है कि यहाँ का कॉलेज का माहौल कैसा लगा आपको आज के दिन में?
2: आज का दिन में सी द डिफरेंस इज नाउडेज, एज माय वन ऑफ माय फ्रेंड ब्रशी सेड, राइट, इट्स ऑल ऑनलाइन, बट वी हैव बीन ट्रेन्ड टू हैंडल द टफेस्ट पोजीशन, टफेस्ट थिंग in our life. That's what this college has given to us. So that never changes, right? So that's what we learned, and that's what we have been implemented, and by God's grace and with our hardship, we are in a very good position right now.
0: तो रुद्रकोटी जी, मैं आपके पूरे भविष्य के लिए, आपके आगे के फ्यूचर के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ रेडियो तेरना की ओर से. और आप यहाँ पे आए, हमारे लिए विशेष आपने यहाँ पे दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ.
2: थैंक्स, प्लेजर इज माइन.
0: मित्रांनो, खरं तर मी स्वतःसुद्धा खूप आनंदित आणि उत्साहित आहे ह्या बॅचला सर्व पाहून, कारण यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे आणि यांचे जे अनुभव आहेत ते सांगत असताना त्यांचा जो उत्साह आहे तो सुद्धा खरं तर आमच्यामध्ये सुद्धा शिरल्यासारखा वाटत आहे. आता माझ्यासमवेत आहेत बेंगलोर येथील टी श्रीकांत. म्हणजे बघा ना, एक जण आहेत चेन्नईचे, एक जण आहेत हैदराबादचे, एक जण बेंगलोरचे, म्हणजे पूर्ण भारत जो आहे तोच पूर्ण तेरना इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये सामावल्यासारखा त्या काळातला खरं तर विषय असणार आहे. टी श्रीकांत जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. आप भी 1986 बैच से हो, बेंगलोर से हो, आपको कैसा फील हो रहा है ये बोलिए.
3: इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग फीलिंग, यू नो, वेरी नॉस्टैल्जिक कमिंग विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड सीइंग द लोकेशन. It's quite about sentimental, you know.
0: Yes.
3: So, and like what, like our other friends told us, it's an amazing feeling, and whatever we are, whatever we achieved in life, yeah, this college plays a major part. You Achha. Know, we are very thankful to our professors, yeah, and all the education and whatever taught to us. Achha. It's a great feeling. Yeah. I would say.
0: मैं हर एक से एक अलग अलग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जैसे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उस जमाने में 1986 के जमाने में आपकी मजा मस्ती कैसे होती थी, या क्योंकि यहाँ महाराष्ट्रियन के भी स्टूडेंट होंगे, या आप उस समय में महाराष्ट्र में आए थे, तो आपकी उस टाइम की मजा मस्ती कैसे होती थी?
3: Yeah, definitely we had fun, but in those days it was bit more controlled, I would say. Not like nowadays, I don't know. Our children are quite different. Mm-hmm. But definitely we had our part fun-filled days. Mm-hmm. At the same time, we also focused on studies also. So it's a balanced way of seeing things. Mm-hmm. And we learned a lot in life, you know. Mm-hmm. As for myself, it was the first time outside the bubble of my home or parents. Mm-hmm. So this place and this college taught me a lot of independence and confidence and things like that.
0: Abhi aap kya kar rahe ho?
3: I am right now working in IT Capgemini Bangalore. Okay. I'm a project manager.
0: Yeah. मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके हमको जो इनकरेज किया है, हमारे लिए रेडियो तेरना पे जो विजिट की है, इसलिए आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ.
3: थैंक यू वेरी मच.
0: मित्रांनो, आपण ह्या ज्या जुन्या बॅचशी आपण चर्चा करत आहोत, आपण ऐकत असतानासुद्धा खूप आनंदी असणार आहात, कारण ही जी जुनी बॅच आहे ती तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं खरं तर हे भूषण आहे आणि हे अलंकार आहेत की ज्यांनी जागतिक पातळीवर जाऊन तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजचं नाव, स्वतःचं नावसुद्धा नावलौकिक वाढवलेलं आहे. आता आपल्यासमवेत आहेत वेलुकुमारजी, जे चेन्नई येथून तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आलेले होते. 1988 सालची त्यांची बॅच आहे आणि ते सुद्धा खूप उत्साहित आहेत तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला आता भेट देऊन. वेलुकुमारजी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. वेलुकुमारजी, आपको कैसे फील हो रहा है ये आप भी बोले, आप दोस्तों के साथ आए, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको बहुत सारी इसमें हैप्पीनेस फील हो रहा होगा, लेकिन तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेज के कैंपस में विजिट करके आपको कैसे लग रहा है?
4: Yeah, I mean, it's a wonderful experience. You know, I'm coming to this place after, you know, so many years, you know, the place which taught me everything, you know, because at the age of 17 or 18, when I landed here, I do not know Hindi or, you know, Marathi or nothing, right? I know only English and Tamil, okay? Yeah. So when I came, really, I mean, it was, the place was so good and the people were so good and I had so many friends and, you know, all the lecturers, everyone were so good at that point of a time. And even now I could see, you know, a couple of lecturers. I was so happy when I met Mr. Date, who was my, you know, project guide at that time, you know. Mm-hmm. So this is really, you know, I mean, I've been so many times to Osmanabad. I've never come to college, you know. I work for L&T Infotech. Mm-hmm. So I've been a couple of times. But this particular visit with the friends, you know, after 30 years to the same college, which taught me everything, is a great experience, actually.
0: Achha. Aap 1988 ke batch mein yahan pe the. तो उस टाइम की कोई ऐसे एक मेमोरी है जो आपके दिमाग में अभी भी चल रही है यहाँ आने पे विजिट करने के बाद ऐसी कोई मेमोरी?
4: हाँ, देयर आर लॉट, आई मीन देयर वर सो मेनी थिएटर्स देयर, यू नो, द टिकट वेयर, यू नो, 2 रुपीस, ताजमहल टॉकीज, राइट? एंड व्हेन आई केम टू दिस प्लेस नाउ, यू नो, माय फादर यूज्ड टू स्पेंड, यू नो, 500 रुपीस अ मंथ, इन व्हिच, यू नो, वी हैव टू पे द रूम रेंट, द फूड, द चाय एक्सपेंसेस, plus the other expenses of any college student, right? Mm-hmm. So now it is totally different. I mean, the room what we booked in Osmanabad today is 6,000 per night, actually. Mm-hmm. So this big change has happened in Osmanabad. And this is really a great place, you know. I mean, we have planned to visit this place, you know, at least once in 2 years or 3 years, actually.
0: अच्छा, जो अभी के स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
4: What I would suggest them is enjoy your life, you know, don't get, you know, only the studies, because the reason why I'm saying this is at that time, you know, I mean, we had a lot of friends, actually. See, this friends context only have taken us, I mean, or taken me to this level. So try to make, you know, good friends, try to make your contact in a real contact, you know, a directory, a big one, actually. So definitely the context will take you to the level what you wanted to achieve, actually.
0: विलु कुमार जी, मैं आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ कि आपकी लाइफ भी बहुत मजे से चलती रहे और आपकी लाइफ में सक्सेस मिलता रहे। मैं रेडियो तेरना की ओर से मैं आपको भी शुभकामनाएं।
4: थैंक यू सो मच।
0: तो मित्रांनो, आपण आतापर्यंत जवळपास 14 बोललेलो आहोत, 5वे व्यक्तिमत्व आपल्या समोर आहेत आणि एकूणच त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्या त्यांच्या बोलण्यातून चेहऱ्यातून व्यक्त होत आहेत आणि आपण खरं तर या सर्व गोष्टीला खरं तर एक खूप चांगली प्रेरणा, एक इन्स्पिरेशन म्हणून घ्यायला हवं की त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी काही जे जगलेलं आहे आणि आज जे काही यश कमवलेलं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे गोष्ट अशी आहे की यांची मैत्री जी इंटॅक्ट आहे, फ्रेंडशिप जी आहे, ती आज 36-37 वर्षानंतर सुद्धा तेवढीच इंटॅक्ट दिसत आहे। आता आपल्या समवेत आहे टी सुधाकर, जे चेन्नई येथूनच आलेले आहेत आणि 1987 बॅचचे ते इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहेत। टी सुधाकर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ।
5: रेडियो टर्ना लिसनर्स, आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू आफ्टर 30 इयर्स ऑफ माय फर्स्ट विजिट टू उस्मानाबाद।
0: या आपका उस वक्त का जो 1987 का जो पीरियड था वो कैसा था, आपको कैसे फील हो रहा है? कॉलेज तो इतना समझो रूरल एरिया होगा उस वक्त आपके हिसाब से। आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो? जैसे कि चेन्नई उस्मानाबाद बहुत लॉन्ग जर्नी है।
5: ओके, आई कुड से दैट आई स्टडीड इन माय स्कूल डेज इन अ विलेज इन तमिलनाडु चेन्नई। सो आई केम टू महाराष्ट्र एट द टाइम उस्मानाबाद। As other friend told, I don't know Hindi. I was only know my mother tongue Tamil and English. Mm-hmm. But after coming here, I found this is my second native place. Mm-hmm. So a lot of friends. The friendship is the one which build our life. Mm-hmm. They do all the support. I could say friendship is more than their relatives.
0: Yeah. Yeah.
5: So this is the message I'm saying you. This place, I could say that it gives a lot of confidence. Even though we are not our batch, we are not very good in studies, we are average students, but we know how to tackle the things, difficulties come across in the life. All the things it came to know through only by Osmanabad College of Engineering life. So we never forget this life.
0: Achha.
5: And now my life in after, because this is a major foundation on my life. Now I am as being a general manager in Saipem company.
0: Okay.
5: So I used to tell to all my friends, all my relatives, even my children, Osmanabad gave me the foundation.
0: Okay. जैसे कि आपने कहा कि 1987 में आप यहाँ पे आए थे, आपको सिर्फ इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज ही आती थी, लेकिन फूड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हम फूड्स वहाँ का अलग है यहाँ का अलग है, आपने मैनेज कैसे किया उसको?
5: Okay. उसी टाइम Okay, I know a little bit Hindi. When we came, at the time we stayed in Shalimar Hotel.
0: Okay.
5: So normally we used to have a 3-time meals, but here comes 10 o'clock to 5 o'clock college. So we have to have a 9 o'clock breakfast, thali, that's a rice plate, and the evening the rice plate. And the afternoon we have fun with the Mamu Bajji shop. So we never forget the Bajji shop, Mamu Bajji shop. And the Hotel Padmaja. And we enjoyed, apart from your question, I can enjoy the, I never forget the Kohinoor Gulab Jamun,
0: Kohinoor yes,
5: Puri,
0: yes, Gulab Jamun, Kohinoor,
5: and opposite to ST shop, there is a Om Hotel. The Ganna Juice,
0: yeah.
5: RA Milk, so we never forget the Taj Mahal Theater. At the time, 88 only the movie Tezab came. Ram Lakhan. So even though I don't know Hindi, with the support of Bashiruddin, I enjoyed the movies.
0: Okay.
5: And Silver Craft, Mahavir.
0: Okay.
5: And Sapne Video. These are all our entertainment.
0: Okay. जैसे कि हम देख रहे हैं कि 36-34 years का ये जो span है, उसके अंदर बहुत सारा बदल गया है. जैसे कि आपने दोस्ती बहुत जरूरी है ऐसा आपने कहा था. उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल जैसे कि मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है इंसानों के लाइफ पे. तो आप कैसे देखते हो आज के ज़माने में आज की फ्रेंडशिप को, आज के लड़कों को, आज के स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ में, मोबाइल के साथ में?
5: ओके, आई कैन से माय ओन ओपिनियन. I am little bit pity on the current generation, including my children, because they are having a more friendship in the virtual, not in the real life.
0: Real life, yes.
5: So this is the most. Dears, those who are listeners, those who are students, please make a relationship with the physical friendship. Be away little bit from the gadgets. This is my suggestions. So in end of the day, in your sorrow, in your happiness, in your all the things of friendship is important. So the friendship will give all the context to build your career also.
0: यस, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आने वाले जनरेशन को ये समझाए कि फिजिकल रिलेशन में जो
5: इंटरेक्शन
0: इन बिटवीन, उसमें जो हमारा हार्ट का, हमारे प्रेजेंट माइंड का जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये वर्चुअल में नहीं है.
5: करेक्ट. टुडे वी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 5 hours ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू उस्मानाबाद. वी नेवर स्विच ऑन अवर मोबाइल. वी टॉक्ड ऑल द वे. But if I see in the train or bus, immediately after sat on the bus, immediately people open the mobile. That's all. This is not a good. Please mingle with all the neighbors, all the things. It will be good for your your stressful life can be reduced the, because of physical contact and the movement.
0: अच्छा, जैसे कि हम पूछ रहे थे कि उस टाइम के जो मेमोरीज है, जैसे कि आप 1987 में उस वक्त थे, तो उस टाइम कॉलेज का माहौल, फ्रेंडशिप, या जैसे गर्ल्स एंड बॉयज का आज के माहौल में देखा जाए तो बहुत इजीली वो एक दूसरों से कांटेक्ट करते. आपके जमाने में क्या होता था?
5: ओके, वी आर लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट बैच. ड्यूरिंग एट द टाइम ऑल द स्टेट ऑफ द इंडिया अकंपनीड इन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. दिस इज प्रेस्टिजियस कॉलेज. ऑल द स्टेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू Tamil Nadu. So all the states, but unfortunately we are very unlucky guys, very very few girls.
0: Okay.
5: So if there is a one girl, there will be a 50 personal boys will be there.
0: Okay.
5: It's like a chakra, you know. It's difficult to penetrate and get.
0: Yes.
5: The pen. Now
0: okay.
5: The life is not there.
0: Okay.
5: But we are the limit and we enjoy the limit.
0: जैसे कि गैदरिंग की एक बात होती है, जैसे कि स्टेज परफॉर्म करना या कहीं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, आपने ऐसे कुछ किया था?
5: यस यस, ड्यूरिंग द कल्चरल पार्टी वी हैव पार्टिसिपेटेड. एट द टाइम इट हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेट स्टूडेंट्स टू परफॉर्म ऑन देयर ओन लैंग्वेज. दिट इज बेस्ट अप्रोच ऑफ द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग.
0: जैसे कि पूरा इंडिया एक साथ ही.
5: एग्जैक्टली.
0: अच्छा, जैसे कि आप लाइफ का
5: लाइक वी कैन से लाइक अ भारत विलास.
0: अच्छा अच्छा. तो जैसे कि आप आगे की लाइफ में, जैसे कि आपकी एक हाफ जर्नी हो चुकी है लाइफ की, एक आप सक्सेसफुल राह पे हो आप, तो आपको आगे की जर्नी में आपको क्या दिखाई देता है आपके फ्रेंडशिप के साथ या आपके लाइफ के साथ, आप कैसे देखते हो?
5: यस, फ्रॉम 1987 हु एवर वी मेड द फ्रेंडशिप टिल वी आर मेंटेनिंग इट, सो होप वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर लाइफ. आल्सो वी हैव स्टार्टेड टू टेल आवर चिल्ड्रन टू कंटिन्यू द फ्रेंडशिप विद आवर मॉम फ्रेंडशिप.
0: अच्छा अच्छा.
5: यस यस, आई कैन से विद माय स्मॉल इन द लैंग्वेज आई कंसिडर टेरना as my lover, I could say that.
0: Yes.
5: धीरे धीरे से मेरे जिंदगी पे आया, धीरे धीरे से मिल दिल को चुराया।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात।
5: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई एम हैप्पी।
0: तो जैसे आप सभी दोस्तों के ओर से मैं थ्री इडियट्स का एक सॉन्ग भी सुनाऊंगा इस इंटरव्यू के साथ में, और आप यहाँ पे आए, हमारी भी हैप्पीनेस बढ़ाया आपने, तो यही रहता है कि अगर आप खुद हैप्पी हो तो दुनिया को हैप्पी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ रेडियो तेरना की ओर से और तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। मैं आपको सबको आपके सक्सेस के लिए भी मैं विशेष देता हूँ।
5: वी आल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी गिवन बाय द फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑल द स्टाफ्स एंड इंट्रोड्यूसिंग अस टू द रेडियो तेरना। I'm very happy. The again after 35 years of relationship, still the bonding is there. This is the strength of the Terna.
0: Yes, thank you. Thank you very much.
6: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: ढोकी में गए, एडमिशन लिए, इधर आए और हॉस्टल तो अच्छा था तब, ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस में थोड़े दिन रहे, फिर सिटी में किसी एक घर में हम लोग रहते थे हॉस्टल की तरह। तब का माहौल अलग था, अब बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन जो भी है हम लोगों के लिए तो अब बहुत अच्छा है।
1: अच्छा,
0: बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा लिखा, तकलीफ भी उठाई बट उसका फल भी अच्छा मिला
1: जी। बशरुद्दीन सर, आप जैसे कह रहे हो कि आप लगभग 36 ईयर हम बैक में चले गए होंगे, आप फ्लैशबैक में 36 इयर्स का बड़ा स्पैन होता है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है एज ए फर्स्ट टाइम विजिट करते टाइम यहाँ पे?
0: देखो 36 इयर्स का अंतर तो मुझे नहीं पता होते, आई मीन उतना नहीं, क्योंकि हम मैं इसके बारे में अक्सर जिक्र करता हूँ, अभी नहीं
1: जी,
0: मेरी फैमिली से जिक्र करता था। जब मेरी शादी हुई मेरे वाइफ को बताता था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, मैं मद्रास का हूँ और इधर आने के लिए हम लोग ट्रेन में आते थे सोलापुर तक, सोलापुर से बस में आना पड़ता था, और आपको तो पता है एसटी कैसा रहता है। हम लोग वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, जब मेरे बच्चे हुए उनको भी मैं बताता हूँ, और मैंने कहा कि मेरे फैमिली को एक बार सबको ले आऊँगा इधर दिखाऊंगा, लेकिन वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों की वजह से आज हम लोग सब इधर आ गए।
1: अच्छा, आपकी यादें जो है वो अबू धाबी में जाने के बाद भी तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज की वैसे ही बाकी है?
0: हाँ, और सही भी मानो तो यहाँ का जो मुझे डिग्री से अच्छा सा जॉब मिला है, मैं अच्छा हूँ बस। और जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे उनको एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी में क्या है, तकलीफें आती है, शुरू शुरू में आपको तकलीफें दिखेंगी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करना। आप नया जॉब ज्वाइन करोगे शुरू में तकलीफ दिखेगा, बहुत से लोग क्या करते हैं तकलीफ देख के छोड़ देते हैं, वो नहीं करना। कहीं भी रहो, दो साल तीन साल जी लगा कर एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आपकी जिंदगी अलग हो जाती है।
1: 36 साल के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई है, बहुत सारी चेंजेस आ गए, तो आप इसको कैसे देखते हो कि उस वक्त के वर्स्ट कंडीशन में आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आपकी पढ़ाई?
0: एक्चुअली 36 इयर्स, इस साल मेरा बेटा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहा है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ,
0: बिट्स पिलानी में, लेकिन दुबई कैंपस में।
1: जी जी,
0: तो मुझे बुलाया गया था ओरिएंटेशन के लिए, जब मैं गया तो पूरा अलग दिखा, पूरा ऑनलाइन है, सब है, ऐसा है, हमारे जमाने में वैसा नहीं था।
1: अच्छा, आपके साथ जो अभी दोस्त आ गए उनकी आप इंट्रोडक्शन करवा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
0: जरूर, मेरे साथ है टी श्रीकांत
1: जी,
0: ये भी मेरे साथ मेरे सेम बैच में है
1: जी,
0: और रुद्र कोटी ये अच्छा। भी मेरे बैच में है 86 में, हम तीनों एक साथ थे और एक साथ रूममेट भी थे
1: जी,
0: चार साल हम लोग एक ही रूम में थे,
1: अच्छा,
0: अलग नहीं हुए।
1: अच्छा,
0: जितने साल भी थे
1: जी, हाँ।
0: और ये है सुधाकर, ये 87 में ज्वाइन किया, हमारे से जूनियर, वन ईयर के,
1: वन ईयर जूनियर।
0: अच्छा। और ये है वेलुक कुमार, ये 88, ये हमारे से भी और जूनियर,
1: जूनियर। अच्छा,
0: लेकिन तब से हम लोग अभी भी दोस्ती है।
1: अच्छा,
0: अभी भी हम लोग मिलते रहते हैं
1: जी,
0: कम से कम दो साल में एक बार, तीन साल में एक बार तो मुलाकात होती है।
1: अच्छा, तो अभी इस वक्त आपके दिमाग में कौन सा ऐसा सॉन्ग चल रहा है आपके फ्रेंडशिप के, फ्रेंडशिप को लेके?
0: मुझे तो वो 3 Idiots की मूवी याद आ रही है।
1: अच्छा आमतौर पे मैंने देखा हुआ है अभी के जो बच्चे इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले या जो पुराने भी है उन सबको 3 Idiots का ही गाना बहुत पसंद आते हो, वो बहती हवा था या कोई और?
0: बस ऐसा ही रैंडम
1: कौन सा है 3 Idiots का सॉन्ग। अच्छा, तो सैयद बशरुद्दीन साहब जी आप यहाँ पे आए सही, तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है आपको देख के कि आप पहले बैच के यहाँ के स्टूडेंट है, तैरना अभियांत्रिकी महाविद्यालय अभी भी आगे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है इसके साथ में, लेकिन आप यहाँ पे आके आपने जो विशेष दिए इसके लिए आपका शुक्रिया।
0: नमस्कार, थैंक यू।
1: तेव्हा मित्रांनो, आत्ता आपण सय्यद बशरुद्दीन यांच्याशी चर्चा केली, आता आपल्या समवेत आहेत श्री रुद्रकोटीजी जे मूळतः हैदराबादचे आहेत आणि 1986 बॅचचेच आहेत। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ रुद्रकोटीजी, आपको कैसे फील हो रहा है ये भी बोलिए आप।
2: इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू नो नथिंग हैज बीन चेंज्ड, यू नो फ्रॉम अ लोकेशन स्टैंड पॉइंट इट माइट बी वेरी डिफरेंट, बट द कॉलेज, द वे हाउ वी फेल्ट, I don't think we can express in words. Okay. You know, like it's as good as the way how we saw the college, where we are offering our own buildings and everything, right? So maybe the location has been changed, but nothing from our end. It is the same college. That's okay. What I feel.
1: Okay. And how will feel कि आपको जब भी आपने यहाँ पे पढ़ाई करके आपके family में आप वापिस गए थे, आपको job लगा, तो यहाँ की यादें और वहाँ का माहौल आपको कैसे लगा यहाँ पे महाराष्ट्र में आके स्पेशली, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो आप पूरे इंडिया में भी है, लेकिन आपको तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्पस से आपको क्या लगता है कि यहाँ का कॉलेज का माहौल कैसा लगा आपको आज के दिन में?
2: आज का दिन में सी द डिफरेंस इज नाउडेज एज माई वन ऑफ माई फ्रेंड ब्रशी सेड, राइट, इट्स ऑल ऑनलाइन, बट वी हैव बीन ट्रेन टू द टू हैंडल

0: the toughest position, toughest thing in our life. That's what this college has given to us. So that never changes, right? So that's what we learned, and that's what we have been implemented. And by God's grace and with our hardship, we are in a very good position right now.
1: तो रुद्रकोटि जी, मैं आपके पूरे भविष्य के लिए, आपके आगे के फ्यूचर के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं रेडियो तेरना की ओर से. और आप यहां पे आए हमारे लिए, विशेष आपने यहां पे दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं.
0: थैंक्स थैंक्स, प्लेजर इज माइन.
1: मित्रांनो, खरं तर मी स्वतःसुद्धा खूप आनंदित आणि उत्साहित आहे ह्या बॅचला सर्व पाहून, कारण यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे आणि यांचे जे अनुभव आहेत ते सांगत असताना त्यांचा जो उत्साह आहे तो सुद्धा खरं तर आमच्यामध्ये सुद्धा शिरल्यासारखा वाटत आहे. आता माझ्यासमवेत आहेत बेंगलोर येथील टी श्रीकांत. म्हणजे बघा ना, एक जण आहेत चेन्नईचे, एक जण आहेत हैदराबादचे, एक जण बेंगलोरचे, म्हणजे पूर्ण भारत जो आहे तोच पूर्ण तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये सामावल्यासारखा त्या काळातला खरं तर विषय असणार आहे. टी श्रीकांत जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. आप भी 1986 बैच से हो, बेंगलोर से हो, आपको कैसा फील हो रहा है ये बोलिए.
2: इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग फीलिंग, यू नो, वेरी नॉस्टैल्जिक coming with our old friends and seeing the location, it's quite both sentimental tha, you know.
1: Yes, yes.
2: So, and like what, like our other friends told us, and are told, it's an amazing feeling, and whatever we are, whatever we achieved in life, yeah, this college plays a major part, you Achha. know. We are very thankful to our professors, yeah, and all the education and whatever taught to us. It's a great feeling, I would say.
1: Main har ek se ek alag alag question puchna chahta hu, jaise aap se bhi ek question puchna chahta hu ki us zamane mein 1986 ke zamane mein aapki maza masti kaise hoti thi, ya kyunki yahan maharashtriyan ke bhi student honge ya aap us samay mein maharashtra mein aaye the, to aapki us time ki maza masti kaise hoti thi?
2: Yeah, definitely we had fun, but in those days it was bit more controlled, I would say. Not like nowadays, I don't know, our children are quite different. But definitely we had our part, fun filled days. At the same time we also focused on studies also, so it's a balanced way of seeing things. And like a lot of we learned a lot in life, you know. As for myself, it was the first time outside the bubble of my home or parents. So this place and this college taught me a lot of independence and confidence and things like that.
1: Abhi aap kya kar rahe ho?
2: I'm right now working in IT, Capgemini, Bangalore. Okay. I'm a project manager.
1: Yeah. मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने यहां पे आके हमको जो इनकरेज किया है, हमारे लिए रेडियो तेरना पे जो विजिट की है, इसलिए आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: मित्रांनो, आपण ह्या ज्या जुन्या बॅचशी आपण चर्चा करत आहोत, आपण ऐकत असताना सुद्धा खूप आनंदी असणार आहात, कारण ही जी जुनी बॅच आहे ती तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं खरं तर हे भूषण आहे आणि हे अलंकार आहेत की ज्यांनी जागतिक पातळीवर जाऊन तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजचं नाव, स्वतःचं नावसुद्धा नावलौकिक वाढवलेलं आहे. आता आपल्यासमवेत आहेत वेलुकुमारजी, जे चेन्नई येथून तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आलेले होते. 1988 सालची त्यांची बॅच आहे आणि ते सुद्धा खूप उत्साहित आहेत तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला आता भेट देऊन. वेलुकुमारजी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. वेलुकुमारजी, आपको कैसे फील हो रहा है ये आप भी बोले, आप दोस्तों के साथ आए, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको बहुत सारी इसमें हैप्पीनेस फील हो रहा होगा, लेकिन तेरणा इंजिनियरिंग कॉलेज के कैंपस में विजिट करके आपको कैसे लग रहा है?
3: Yeah, I mean, it's a wonderful experience. You know, I'm coming to this place after, you know, so many years, you know, the place which taught me everything, you know, because at the age of 17 or 18, when I landed here, I do not know Hindi or, you know, Marathi or nothing, right? I know only English and Tamil, okay?
1: Yeah.
3: So when I came, really, I mean, it was, the place was so good and the people were so good and I had so many friends and, you know, all the lecturers, everyone were so good at that point of a time. And even now I could see, you know, a couple of lecturers. I was so happy when I met Mr. Date, who was my, you know, project guide at that time, you know. So this is really, you know, I mean, I've been so many times to Osmanabad. I've never come to college, you know. I work for L&T, Infotech. So I've been a couple of times. But this particular visit with the friends, you know, after 30 years to the same college, which taught me everything, is a great experience, actually.
1: Achha. आप 1988 के बैच में यहाँ पे थे. तो उस टाइम की कोई ऐसे एक मेमोरी है जो आपके दिमाग में अभी भी चल रही है यहाँ आने पे विजिट करने के बाद, ऐसी कोई मेमोरी?
3: हाँ, देयर आर लॉट, आई मीन देयर वर सो मेनी थिएटर्स देयर, यू नो द टिकट वेयर यू नो 2 रुपीस,
1: ताजमहल टॉकीज,
3: ताजमहल टॉकीज, राइट? एंड व्हेन आई केम टू दिस प्लेस नाउ, यू नो माय फादर यूज्ड टू स्पेंड यू नो 500 रुपीस अ मंथ, इन व्हिच यू नो वी हैव टू पे द रूम रेंट, द फूड, द चाय एक्सपेंसेस, plus the other expenses of any college student, right? So now it is totally different. I mean, the room what we booked in Osmanabad today is 6,000 per night actually. So this big change has happened in Osmanabad, and this is really a great place, you know. I mean, we have planned to visit this place, you know, at least once in 2 years or 3 years actually.
1: अच्छा, जो अभी के स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
3: What I would suggest them is enjoy your life, you know, don't get, you know, only the studies, because the reason why I'm saying this is at that time, you know, I mean, we had a lot of friends actually. See, this friends context only have taken us, I mean, or taken me to this level. So try to make, you know, good friends, try to make your contact in a real contact, you know, a directory, a big one actually. So definitely the context will take you to the level what you wanted to achieve actually.
1: वेलू कुमार जी, मैं आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ कि आपकी लाइफ भी बहुत मजे से चलती रहे और आपकी लाइफ में सक्सेस मिलता रहे। मैं रेडियो तेरना की ओर से मैं आपको भी शुभकामनाएं।
3: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
1: तो मित्रांनो, आपण आत्तापर्यंत जवळपास 14 बोललेलो आहोत, 5वे व्यक्तिमत्व आपल्या समोर आहेत आणि एकूणच त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्या त्यांच्या बोलण्यातून, चेहऱ्यातून व्यक्त होत आहेत आणि आपण खरं तर या सर्व गोष्टीला खरं तर एक खूप चांगली प्रेरणा, एक इन्स्पिरेशन म्हणून घ्यायला हवं की त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी काय जे जगलेलं आहे आणि आज जे काही यश कमवलेलं आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे गोष्ट अशी आहे की त्यांची मैत्री जी इंटॅक्ट आहे, फ्रेंडशिप जी आहे, ती आज 36-37 वर्षानंतर सुद्धा तेवढीच इंटॅक्ट दिसत आहे। आता आपल्या समवेत आहे टी सुधाकर, जे चेन्नई येथूनच आलेले आहेत आणि 1987 बॅचचे ते इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहेत। टी सुधाकर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ।
4: रेडिओ टर्ना लिसनर्स, आय एम व्हेरी हॅपी टू इंटरॅक्ट विथ यू आफ्टर 30 इयर्स ऑफ माय फर्स्ट विजिट टू उस्मानाबाद।
1: या आपका उस वक्त जो 1987 का जो पीरियड था वो कैसा था, आपको कैसे फील हो रहा है? कॉलेज तो इतना समझो रूरल एरिया होगा उस वक्त आपके हिसाब से। आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो? जैसे कि चेन्नई उस्मानाबाद बहुत लॉन्ग जर्नी है।
4: ओके, आई कुड से दैट आई स्टडीड इन माय स्कूल डेज इन विलेज इन तमिलनाडु चेन्नई। सो आई केम टू महाराष्ट्र एट द टाइम उस्मानाबाद। As other friend told, I don't know Hindi. I was only know my mother tongue Tamil and English. But after coming here, I found this is my second native place. So lot of friends. The friendship is the one which build our life. They do all the support. I could say friendship is more than their relatives.
1: Yeah, yeah.
4: So this is the message I'm saying you. This place, I could say that it gives a lot of confidence. Even though we are not our batch, we are not very good in studies, we are average students, but we know how to tackle the things, difficulties come across in the life. All the things it came to know through only by Usmanabad College of Engineering life. So we never forget this life.
1: Achha.
4: And now my life in after, because this is a major foundation for my life. Now I am as being a general manager in Saipam company.
1: Okay,
4: so I used to tell to all my friends, all my relatives, even my children, Osmanabad gave me the foundation.
1: Okay, जैसे कि आपने कहा कि 1987 में आप यहाँ पे आए थे, आपको सिर्फ इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज ही आती थी, लेकिन फूड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हम फूड्स वहाँ का अलग है यहाँ का अलग है, आपने मैनेज कैसे किया उसको?
4: ओके, उसी टाइम ओके आई नो लिटिल बिट हिंदी, व्हेन वी केम एट द टाइम वी स्टेड इन शालीमेर होटल।
1: ओके,
4: सो नॉर्मली वी यूज टू हैव अ 3 मील्स, बट हियर कम्स 10 टू 5 कॉलेज, सो वी हैव टू हैव अ 9 ब्रेकफास्ट थाली, दस अ राइस प्लेट, एंड द ईवनिंग द राइस प्लेट, एंड द आफ्टरनून वी हैव फन विथ अ मामू बज्जी शॉप।
1: अच्छा,
4: सो वी नेवर फॉरगेट द बज्जी शॉप, मामू बज्जी शॉप, एंड द होटल पद्मजा, एंड वी एंजॉयड। ओके, apart from your question, I can enjoy the, I never forget the Kohinoor gulab jamun,
1: Kohinoor
4: yes, puri,
1: yes, gulab jamun, Kohinoor,
4: and opposite to ST shop there is a Om hotel, the Ganna juice,
1: yeah,
4: RA milk. So we never forget the Taj Mahal theater. At the time 88 only the movie Tezab came,
1: Tezab,
4: Ram Lakhan. So even though I don't know Hindi, with the support of Bashiruddin, I enjoyed the movies.
1: Okay, okay.
4: And
1: okay.
4: Silver Craft, Mahavir,
1: okay.
4: and sapne video, these are all our entertainment.
1: Okay. जैसे कि हम देख रहे हैं कि 36-34 years का ये जो span है उसके अंदर बहुत सारा बदल गया है. जैसे कि आपने दोस्ती बहुत जरूरी है ऐसा आपने कहा था, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल जैसे कि मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है इंसानों के लाइफ पे, तो आप कैसे देखते हो आज के ज़माने में आज की फ्रेंडशिप को, आज के लड़कों को, आज के स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ में, मोबाइल के साथ में?
4: ओके, आई कैन से माय ओन ओपिनियन, आई एम लिटिल बिट पिटी ऑन द करंट जनरेशन इंक्लूडिंग माय चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर हैविंग अ मोर फ्रेंडशिप इन द वर्चुअल नॉट इन द रियल लाइफ.
1: रियल लाइफ, यस.
4: सो दिस इज द मोस्ट डियर्स, दोस हु आर लिसनर्स, दोस हु आर स्टूडेंट्स, प्लीज make a relationship with a physical friendship.
1: Yeah.
4: Be away little bit from the gadgets. This is my suggestions. So in end of the day, in your sorrow, in your happiness, in your all the things of friendship is important. So the friendship will give all the context to build your career also.
1: यस, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आने वाले जनरेशन को ये समझाए कि फिजिकल रिलेशन में जो
4: इंटरेक्शन
1: इन बिटवीन, उसमें जो हमारा हार्ट का, हमारे प्रेजेंट माइंड का जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये वर्चुअल में नहीं है.
4: करेक्ट. टुडे वी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 5 hours ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू उस्मानाबाद. वी नेवर स्विच ऑन अवर मोबाइल, वी टॉक्ड ऑल द वे. But if I see in the train or bus, immediately after sat on the bus, immediately people open the mobile. That's all. This is not a good. Please mingle with all the neighbors, all the things. It will be good for your your stressful life can be reduced to the because of physical contact and the movement.
1: अच्छा, जैसे कि हम पूछ रहे थे कि उस टाइम के जो मेमोरीज है, जैसे कि आप 1987 में उस वक्त थे, तो उस टाइम कॉलेज का माहौल, फ्रेंडशिप, या जैसे गर्ल्स एंड बॉयज का आज के माहौल में देखा जाए तो बहुत इजीली वो एक दूसरों से कांटेक्ट करते, आपके जमाने में क्या होता था?
4: ओके, वी आर लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट बैच ड्यूरिंग एट द टाइम ऑल द स्टेट ऑफ द इंडिया अकंपनीड इन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. दिस इज प्रेस्टीजियस कॉलेज, ऑल द स्टेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू Tamil Nadu. So all the states, but unfortunately we are very unlucky guys, very very few girls.
1: Okay.
4: So if there is a one girl, there will be a 50% boys will be there.
1: Okay.
4: It's like a chakravyuh, you know, it's difficult to penetrate and get.
1: Yes.
4: The point. Now
1: okay.
4: The life is not there.
1: Okay.
4: But we are the limit and we enjoy the limit.
1: जैसे कि गैदरिंग की एक बात होती है, जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस करना या कहीं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, आपने ऐसे कुछ किया था?
4: यस यस, ड्यूरिंग द कल्चरल पार्टी वी हैव पार्टिसिपेटेड. एट द टाइम इट हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेट स्टूडेंट्स टू परफॉर्म ऑन देयर ओन लैंग्वेज. दिट इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग.
1: जैसे कि पूरा इंडिया एक साथ ही.
4: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
1: अच्छा, जैसे कि आप लाइफ का
4: इतना, वी कैन से लाइक अ भारत विलास.
1: अच्छा अच्छा. तो जैसे कि आप आगे की लाइफ में, जैसे कि आपकी एक हाफ जर्नी हो चुकी है लाइफ की, एक आप सक्सेसफुल राह पे हो आप, तो आपको आगे की जर्नी में आपको क्या दिखाई देता है आपके फ्रेंडशिप के साथ या आपके लाइफ के साथ, आप कैसे देखते हो?
4: यस, फ्रॉम 1987 व्होएवर वी मेड द फ्रेंडशिप टिल वी आर मेंटेनिंग इट, सो होप वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर लाइफ. आल्सो वी हैव स्टार्टेड टू टेल आवर चिल्ड्रन टू कंटिन्यू द फ्रेंडशिप विद आवर मॉम फ्रेंडशिप.
1: अच्छा अच्छा.
4: यस यस, आई कैन से विद माय स्मॉल इन द लैंग्वेज, आई कंसिडर टर्ना as my lover, I could say that.
1: Yes.
4: धीरे धीरे से मेरे जिंदगी पे आया, धीरे धीरे से मिल दिल को चुराया.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात.
4: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई एम हैप्पी.
1: तो जैसे आप सभी दोस्तों के ओर से मैं थ्री इडियट्स का एक सॉन्ग भी सुनाऊंगा इस इंटरव्यू के साथ में, और आप यहाँ पे आए, हमारी भी हैप्पीनेस बढ़ाया आपने, तो यही रहता है कि अगर आप खुद हैप्पी हो तो दुनिया को हैप्पी कर सकते हो. तो इसलिए मैं आपको भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ रेडियो तेरना की ओर से और तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से. मैं आपको सबको आपके सक्सेस के लिए भी मैं
4: Okay. And also we also thank you very much for the hospitality given by the from the principal, all the staffs, and introducing us to the Radio Terna. I'm very happy. The again after 35 years of relationship, still the bonding is there. This is the strength of the Terna.
1: Yes, thank you. Thank you very much.
5: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो.

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: आजादी हो।
1: ओ जल्दी आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो नोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा
2: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: हुसैन साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।